0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और ऐसी कार्रवाइयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के कल रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। सिम्फनी में ब्रिक्स देशों के विभिन्न वाद्य यंत्रों और संगीत परंपराओं को भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के साथ जोड़ा गया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों की संगीत संस्कृतियों के बीच समन्वय और ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि तथा एकजुटता की भावना को प्रदर्शित किया। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक साथ मिलकर बेहतर दुनिया के निर्माण की भावना को दर्शाने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों की समृद्ध संस्कृतियों और विविध सभ्यताओं को भी प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह

0: आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं दिल्ली में अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। एलेना रायबाकिना ने महिला अमेरिकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए फाइनल में रूस की रायबाकिना ने बेलारूस की आयरना सबलेंका को पराजित किया। रायबाकिना का ये पहला अमेरिकी ओपन खिताब जबकि तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमेरिका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्वाइट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया था। भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटून कॉस्मिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है। वियतनाम के फान थिएट में स्पोर्ट फेस्टिवल चैलेंजर में खेले गए मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने फाइनल में जापान के यामातो सुएओका और नाओकी ताजिमा की जोड़ी को 6-1, 7-6 से हराया। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Today is the second and final day of the BRICS summit. The two-day summit began yesterday at Bharat Mandapam in New Delhi. The BRICS nations adopted the New Delhi Declaration 2026 on the first day of the summit itself. The BRICS nations reiterated their commitment to the peaceful resolution of international disputes through dialogue, consultation and diplomacy. The leaders also expressed their concern over the continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. They also strongly condemned the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April last year in the strongest terms and reaffirmed their commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations. India is organizing the summit for the fourth time. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। Representation, responsiveness और rule making तीनों में सुधार आवश्यक है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: Prime Minister Narendra Modi and President of China Xi Jinping have reaffirmed that India and China should take a strategic and long-term perspective of their ties and differences should not become disputes. During their bilateral meeting on the sidelines of BRICS summit yesterday, the two leaders welcomed the steady progress in India-China bilateral relations since their last meeting in Tianjin in August last year. The two leaders agreed that both sides must continue to expand common ground on regional and global issues and in addressing challenges. Earlier in the day, Prime Minister Modi held a series of bilateral meetings with leaders of BRICS countries. Prime Minister Modi met his Ethiopian counterpart Dr. Abiy Ahmed Ali, Malaysian counterpart Anwar Ibrahim and Vietnamese counterpart Lee Min Hyung. Mr. Modi also held talks with Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Union Home Minister Amit Shah began a three-day visit to Mumbai yesterday, during which he will visit the Asiatic Society of Mumbai and

सुबह का ये वक्त अपने आप में एक खूबसूरत एहसास है। खिड़की से आती हल्की सी रोशनी, चाय की प्याली से उठती भाप, बाहर की दुनिया में धीरे धीरे लौटती रौनक और मन में एक नई शुरुआत की उम्मीद। हर सुबह हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी उलझने हों, हर दिन अपने साथ कुछ नया लेकर आता है।

तो क्यों ना आज की सुबह, या आज की सुबह को थोड़ी सी मुस्कान, थोड़ी सी सुकून और ढेर सारे अच्छे संगीत के नाम कर दिया जाए। आप जहां भी हैं, हमारे साथ बने रहिए। सुहानी सुबह में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। 100.1 FM गोल्ड खरा

0: begins with.
1: फन एफएम गोल्ड खरा सोना पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह में दीप जानी आप सभी सुनने वालों के साथ। एक सूचना, 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल की अध्यक्षता में दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को अपराह्न 12:30 से मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल

सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्कल, P36 CR एवेन्यू, कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल cpmg_wb@indiapost.gov.in या adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332120250 अथवा 0332120612 अथवा 0332120500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों या ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। उपर्युक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त।

सुबह का मौसम कुछ भी कहता है, कभी ठंडी हवा के झोंकों में सुकून देता है तो कभी बादलों की ओट से सूरज की किरणें या उन्हें भेजकर दिन को खुशनुमा बना देता है। और बदलते मौसम के साथ जरूरी है कि हम अपने दिन की तैयारी भी उसी के मुताबिक करें। तो आइए सुहानी सुबह में अब जान लेते हैं मौसम का हाल। आपके और हमारे शहर में आज कैसा रहेगा मौसम, कहां बारिश की संभावना है, कहां धूप खिल सकती है और दिन भर में तापमान में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम की ताजा जानकारी 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर। कोलकाता में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान सामान्यतः बादलों से घिरा रहेगा। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 31

माफ कीजिएगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 26 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री दर्ज किया गया। इस दौरान मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी 95% और मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी 77% रही। पिछले 24 घंटों में 5.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मछुआरों के लिए पश्चिम बंगाल में मौसम संबंधी कोई चेतावनी नहीं है। सात बजकर 30 मिनट और 20 सेकंड सुन रहे हैं आप कार्यक्रम सुहानी सुबह देवचानी के साथ।

आज 13 सितंबर है, कैलेंडर की एक और नई तारीख जो अपने साथ बीते कल की यादें और आने वाले कल की उम्मीदें लेकर आई है। तो आइए इस तारीख से जुड़े इतिहास के कुछ रोचक पन्नों को पलटे और जाने कि आज का दिन अपने आप में क्यों खास है। आज के ही दिन 1501 में माइकल एंजेलो ने डेविड की मूर्ति पर काम शुरू किया जो रेनेसां मूर्तिकला की एक उत्कृष्ट कृति है। सितंबर 1845 में यानी आज के ही दिन अंग्रेज रसायनज्ञ यानी केमिस्ट माइकल फैराडे ने फैराडे प्रभाव की खोज की थी। 1925 में अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय जेवियर विश्वविद्यालय न्यू ऑर्लिंस में खुला था आज के ही दिन। 1961 में नासा का मानव रहित मर्करी एटलस 4 पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया गया था आज के ही दिन। 1965 में बीटल्स ने अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता जो 1964 के सर्वश्रेष्ठ समूह का पुरस्कार था। 1971 में विश्व हॉकी संघ की स्थापना हुई थी आज के ही दिन यानी 13 सितंबर। 1983 में अमेरिकी टकसाल ने $10 का ओलंपिक ईगल सिक्का ढाला था जो 50 से अधिक वर्षों में ढाला गया पहला अमेरिकी स्वर्ण सिक्का था। 1997 में एल्टन जॉन ने ब्रिटेन में वेल्स की राजकुमारी डायना को श्रद्धांजलि के रूप में कैंडल इन द विंड 1997 नामक एक एकल गीत को रिलीज किया था। 1997 में भारत में मदर टेरेसा का राजकीय अंतिम संस्कार आयोजित किया गया था आज के ही दिन। अगर आज आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो हमारी ओर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए बता दें कि आप अपना जन्मदिन किन लोगों के साथ साझा करते हैं। आज के ही दिन 1660 में उपन्यासकार डैनियल डेफो का जन्म हुआ था जिन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो लिखा था। 1960 में आज के ही दिन ब्रिटिश लेखक रोल्ड डाल का जन्म हुआ था कार्डिफ वेल्स में जिन्होंने चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री द बिग फैट जायंट जैसी किताबें लिखी थी। 1967 में डैलस टेक्सस में जन्मे अमेरिकी 400 मीटर धावक माइकल जॉनसन जिन्होंने ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक भी जीता था। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जन्मे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट स्पिन गेंदबाज और प्रसारक शीन वॉन का जन्म आज के ही दिन हुआ था। 1971 में आज के ही दिन क्रोएशिया में पैदा हुए थे गोरन इवानिसेविच यानी टेनिस खिलाड़ी गोरन। सुन रहे हैं आप 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर कार्यक्रम सुहानी सुबह। मैं देवजानी आप सभी सुनने वालों के साथ।

आइए रुक करते हैं न्यूज़पेपर यानी कि अखबार की ओर और देख लेते हैं कि सुर्खियां क्या क्या है। अखबार बता रहे हैं मोदी और जिनपिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विशेषाधिकार के पिरामिड को साझेदारी मंच में बदले। आज वैश्विक दक्षिण

वैश्विक संकटों में पहली पंक्ति में खड़ा है, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में वो सबसे पीछे की पंक्ति में है। मोदी ने शिखर सम्मेलन में अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर एक विशिष्ट पहचान स्थापित की है और ये गुट किसी के खिलाफ नहीं है।

साइबर ठगी, पूर्व बैंक कर्मी समेत दो आरोपी गिरफ्तार। सरकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन का लाभ दिलाने का झांसा देकर गरीब ग्रामीणों के बैंक खाते खुलवाकर उनमें साइबर ठगी की रकम मंगाने वाले गिरोह का पुलिस और साइबर टीम ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह में शामिल पूर्व बैंक कर्मचारी समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार पूर्व बैंक कर्मचारी रोहित कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान 300 से अधिक बैंक खाते खुलवाए थे, जिनकी साइबर अपराध में संलिप्तता की जांच की जा रही है। केंद्र ने बौद्ध सर्किट को हवाई मार्ग से जोड़ने की पहल की है। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, 2467 करोड़ रुपए का निजी निवेश।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बीच भारत चीन आर्थिक रिश्तों पर जोर। चीन को भारत का निर्यात 36.62 और आयात 16% बढ़ा। ब्रिक्स ने IMF विश्व बैंक में व्यापक सुधार पर जोर दिया। ब्रिक्स ने विविध ऊर्जा मिश्रण का किया समर्थन, जीवाश्म ईंधन बने रहेंगे महत्वपूर्ण।

और अब खेल की खबरों की ओर नजर दौड़ाते हैं। टियाफो को हराकर बेन शेल्टन फाइनल में मुकाबला ज्वेरब से। फ्रांसिस को टूर्नामेंट में तीसरी बार सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। जी हां, हम बातें कर रहे हैं टेनिस यूएस ओपन की। रविवार यानी आज होने वाले फाइनल में दर्शकों का समर्थन लगभग पूरी तरह शेल्टन के पक्ष में रहने की उम्मीद है। अब वो लंबे समय से चले आ रहे यूएस ग्रैंड स्लैम खिताब के सूखे को खत्म करने की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरे हैं। टाउनसेंड और सिन्याकोवा ने महिला युगल का खिताब जीता। अमेरिका की टेलर टाउनसेंड और चेक गणराज्य की कैटरीना सिन्याकोवा ने एक टीम के रूप में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करते हुए वाइल्ड कार्ड धारी एशलिन क्रूगर और ऑर्बिन मॉन्टगोमरी को हराकर यूएस ओपन महिला युगल खिताब जीत लिया है। सुप्रिया की हैट्रिक से भारतीय टीम फाइनल में। जूनियर महिला एशिया कप में भारत ने गेंद पर नियंत्रण के मामले में दबदबा बनाए रखा और 21वें मिनट में कोरियाई गोल के 23 मीटर के भीतर हवा में आई गेंद को भारतीय विंगर ने लपका और सर्कल के भीतर शानदार क्रॉस किया। भारत ने आखिरी क्वार्टर में बेहतरीन रक्षा पंक्ति का प्रदर्शन करते हुए कोरियाई हमलों को नाकाम कर दिया। उधर इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। पाकिस्तान 9वें नंबर के बल्लेबाज रजा उल्लाह खान के शानदार छक्कों की मदद से तीसरे टेस्ट को चौथे दिन तक खींचने में सफल रहा, लेकिन इंग्लैंड ने कप्तान जो रूट और जॉर्डन कॉक्स के अर्धशतकों से शनिवार को आसानी से लक्ष्य हासिल कर श्रृंखला 3-0 से जीत ली। जी हाँ, हम क्रिकेट की बातें कर रहे हैं और एशिया से बाहर होने पर दिव्यांशी ने उत्पीड़न का आरोप लगाया। दिव्यांशी की जगह दो बार की एशियाई खेल पदक विजेता नोरिम रोशिबिना देवी को शामिल किया गया है। ब्रिक्स ने खेल प्रौद्योगिकी पर कार्य समूह के गठन के प्रस्ताव का किया समर्थन। अफगानिस्तान के

खिलाफ भारत के सामने सैमसन और सूर्यवंशी में चयन की दुविधा। अफगानिस्तान के खिलाफ रविवार को 3 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत के सामने दुविधा होगी कि वो अंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी को उतारे या संजू सैमसन के अनुभव पर भरोसा करे। और भारत की निगाहें 8वीं बार खिताब जीतने पर, एशिया कप फाइनल में श्रीलंका से मुकाबला, शिफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा से लगाई जा रही है उम्मीदें। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम सुहानी सुबह देवजानी के साथ 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर। फिलहाल इस आखिरी गीत के साथ ही साथ मैं देवजानी लेती हूँ आप सभी सुनने वालों से और FM गोल्ड से इजाजत। दोबारा FM गोल्ड पर हमारी मुलाकात होगी 11:10 पर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद के साथ। और आप मुझसे अगर उससे पहले मिलना चाहते हैं तो आप ट्यून कर सकते हैं 107 FM रेनबो 10:02 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कल ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
1: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
3: I would like to say that the outcome document.
4: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी

0: की रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
1: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
2: प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
7: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृह मंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
8: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बात

0: बातचीत के संकेत मिले हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।

0: भारत अफगानिस्तान के साथ तीन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आरेना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील कुपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रेविट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव का मुकाबला अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेटिन बिटुन कोजमिन की जोड़ी ने ATP टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
1: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत के रुख को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्ता के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता। साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी। 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्य योजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद। जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी, जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी। कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी। डोडा में जैश आतंकी का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार। ATS ने आजमगढ़ से दबोचा। आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें। हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास। रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी, चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा। संयंत्र में समुद्री पानी को RO तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे, अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबकीना ने आरेना साबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन से अलग कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में हथियार तथा मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगी। यह उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। ईरान और ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य के लिए नए जलमार्ग पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश इसे आगामी क्षेत्रीय बैठक में अन्य खाड़ी देशों के समक्ष रखने की योजना बना रहे हैं। योजना के अंतर्गत खाड़ी में प्रवेश मार्ग पूरी तरह से ईरानी क्षेत्रीय जलसीमा के भीतर होगा। इसके निकास मार्ग का हिस्सा भी ईरानी नियंत्रण में होगा। ईरान के अधिकारियों ने कहा कि इस समझौते का मतलब ये नहीं है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जा रहा है। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। उधर टेनिस में एलिना रायबाकीना ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। रायबाकीना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्पुस्की ने जर्मनी के केविन क्रार्वेटेस और टिम पुइट्स को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का सामना अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा। पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच मंगलवार को और तीसरा तथा अंतिम मुकाबला बृहस्पतिवार को होगा। सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Renu Kataria. BRICS leaders have condemned the April 2025 Pahalgam terrorist attack in Jammu and Kashmir. In a joint statement, BRICS leaders have called for zero tolerance towards terrorism, reaffirming the regional bloc's commitment to combating terrorism in all its forms. The New Delhi Declaration, adopted unanimously at the opening day of the summit, said that all acts of terrorism are criminal and

के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ईरान और ओमान हुर्मुज जल डमरू मध्य के लिए नए जलमार्ग पर सहमत हुए। सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों के बाद इराक ने सैन्य कमांडर को बर्खास्त किया। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज बेन शेल्टन का सामना अलेक्जेंडर ज़वरेव से और

0: दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
1: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान और ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य के लिए नए जलमार्ग पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश इसे आगामी क्षेत्रीय बैठक में अन्य खाड़ी देशों के समक्ष रखने की योजना बना रहे हैं। इसके अंतर्गत खाड़ी में प्रवेश मार्ग पूरी तरह से ईरानी क्षेत्रीय जल सीमा के अंदर होगा। इसके निकास मार्ग का हिस्सा भी ईरानी नियंत्रण में होगा। इसके लागू हो जाने से जलमार्ग का दक्षिणी मार्ग बंद हो जाएगा। ये अमरीका की मांगों का सीधा विरोध है। ईरान के अधिकारियों ने कहा है कि इस समझौते का मतलब ये नहीं है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जा रहा है। ईरान ने जलमार्ग के खुलने से पहले अमरीका के सामने शर्तें रखी हैं। उसने कहा है कि जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक ये मार्ग बंद रहेगा। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियानों के कमांडर को पद से हटा दिया है। साथ ही ईरान की सीमा से लगी शलामचेह चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन

0: जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आरेना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रेविट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटुन कोज़ेमिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का यह दूसरा खिताब है।
1: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा दल ने बताया कि अब तक बरामद शवों में से 104 की पहचान कर ली गई है और उन्हें परिवारों को सौंप दिया गया है। अभी लगभग 5,130 लोग लापता हैं। सुरक्षा बल खोज और बचाव अभियान चला रहे हैं। अब तक 13,700 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि 339 लोगों का अस्पताल में उपचार जारी है। एआई कंपनी एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डारियो अमोदेई ने एआई उद्योग के तेजी से हो रहे विकास को कम करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा उपायों को तकनीक के साथ तालमेल में समय लगेगा। श्री अमोदेई ने चेतावनी दी कि मजबूत सुरक्षा उपायों के बिना एआई 6-12 महीनों के भीतर एक समूह का नेतृत्व करने में सक्षम हो सकता है। ये संभावित रूप से इंटरनेट पर कब्जा कर अन्य जोखिम भी पैदा कर सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ईरान और ओमान होर्मुज जलडब्लू मध्य के लिए नए जलमार्ग पर सहमत हुए। सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों के बाद इराक ने सैन्य कमांडर बर्खास्त किया। एलिना रायबकीना ने आरेना साबालेंको को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप क्रिकेट फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. BRICS leaders condemn 2025 Pehelgam terror attack in Jammu and Kashmir, call for zero tolerance towards terrorism, also express concern over escalation of tensions in West Asia. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with presidents of Kazakhstan, Philippines, Egypt, South Africa and Burundi today on sidelines of BRICS summit. Iran and Oman agree on new entry and exit shipping routes for Strait of Hormuz. Iraqi military commander dismissed after drone attacks against Saudi Arabia. Alina Rybakina of Kazakhstan beats Belarusian Arina Sabalenka to win women's singles title of US Open tennis in New York. And in cricket, India to take on defending champion Sri Lanka in Women's Asia Cup final in Dubai this evening. And now the news in detail. BRICS leaders have condemned the April 2025 Pahalgam terrorist attack in Jammu and Kashmir. In a joint statement, BRICS leaders have called for zero tolerance towards terrorism, reaffirming the regional bloc's commitment to combating terrorism in all its forms. The New Delhi Declaration, adopted unanimously at the opening day of the summit, said that all acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation and who committed such an act. More from our correspondent.
4: The New Delhi Declaration condemned in the strongest terms the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April 2025, during which 26 people were killed and many more injured. The attack was later traced to terrorists backed and trained in Pakistan. The declaration also called for action against the cross-border movement of terrorists, terrorism financing, and safe havens. BRICS leaders also urged the member nations to ensure zero tolerance for terrorism and reject double standard in countering terrorism. They further called for concerted actions against all UN-designated terrorists and terrorist entities. The joint declaration also expressed deep concern over the continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. It said the BRICS countries will increase efforts through dialogue and diplomacy towards a long-term understanding that will contribute to lasting peace, security and stability in the region. Saklayan Akhtar, Kashwani News, Delhi.
3: In his remarks yesterday, Prime Minister Narendra Modi noted that the New Delhi Declaration provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
5: बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता. रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है. न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है. अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले.
3: Today is the second and final day of the BRICS summit. Our correspondent has filed this report.
6: Today, BRICS member and partner countries will participate in the session based on resilience, innovation, cooperation and sustainability, shaping the future for inclusive global growth. The 10 partner countries are Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Cuba, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan and Vietnam. After the conclusion of the session, Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral meetings with presidents of Kazakhstan, Philippines, Egypt, South Africa and Burundi. He will also hold meetings with vice presidents of Nigeria and Uganda. The summit is being held under India's BRICS chairship with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With Dipendra Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
3: Prime Minister Narendra Modi held a series of bilateral meetings with leaders of BRICS countries yesterday. A report.
7: Prime Minister Narendra Modi and President of China Xi Jinping have reaffirmed that India and China should take a strategic and long-term perspective of their ties, and differences should not become disputes. During their bilateral meeting on the sidelines of BRICS summit, the two leaders welcomed the steady progress in India-China bilateral relations since their last meeting in Tianjin in August last year. The two leaders expressed commitment to a fair, responsible and mutually acceptable resolution of the boundary question, proceeding from the political perspective of their overall bilateral relations and their long-term interests of the two peoples. The two leaders agreed that both sides must continue to expand common ground on regional and global issues and in addressing challenges. Earlier in the day, Prime Minister Modi met his Ethiopian counterpart Dr. Abiy Ahmed Ali, Malaysian counterpart Anwar Ibrahim and Vietnamese counterpart Lee Minh Hung. The leaders reviewed cooperation in trade, defense and security, people-to-people ties and also covered regional and global issues. Mr. Modi also held talks with Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. With BRICS Team's report, Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
3: This is Akashwani. You are listening to World News. We bring you the top international news and updates from around the globe. Iran and Oman have agreed on new entry and exit shipping routes for the Strait of Hormuz, which they plan to present to other Gulf nations at an upcoming regional meeting. A report.
8: Under this new plan, the entry route into the Gulf will sit entirely within Iranian territorial waters, and a section of the exit route will also fall under Iranian control. Once this new system starts operating, the waterway's southern route will be closed, directly opposing the United States' demands to keep it open. Furthermore, Iranian official emphasized that this agreement does not mean

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री इस समय भागीदार देशों के विशेष सत्र को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
1: क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है। फ्रेंड्स, भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कॉरपोरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने हैं।

0: हमने ब्रिक्स कनेक्ट के माध्यम से स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी, वीमेन इन वर्कफोर्स, सोशल सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दिया है।
1: और जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र के पास। दीपेंद्र, आज सम्मेलन के अंतिम दिन एजेंडे में क्या कुछ खास है?
2: देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आज सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने साझेदार देशों के नेताओं का भारत मंडपम में गर्मजोशी से स्वागत किया और बाद में ग्रुप फोटो के लिए भी सभी एकत्रित हुए। इस सत्र के बाद दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिश्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और इराक के उपराष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। आपको बता दूं कि भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स तक रहा है। वर्ष 2006 में चार देशों से शुरू हुआ यह समूह कुल मिलाकर 21 देशों का हो गया है, जिसमें सदस्य और साझेदार देश शामिल हैं। और भारत का ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में जो है दोगुना ज्यादा बढ़ा है। ताकि ब्रिक्स समझो है भारत के लिए आर्थिक।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। कल सम्मेलन के पहले दिन ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में हथियार तथा मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में रेंज स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगी। ये ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन ब्रिक्स के सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। इन नेताओं में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग, सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश शामिल हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच मंगलवार को और तीसरा तथा अंतिम मुकाबला बृहस्पतिवार को होगा। सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेले जाएंगे। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। उधर टेनिस में एलेना रायबाकिना ने अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi today welcomed leaders of BRICS partner countries on the second and last day of 18th BRICS summit at Bharat Mandapam in New Delhi. They include Prime Minister of Malaysia Anwar Ibrahim, Vietnamese Prime Minister Lee Min Hung, Foreign Minister of Saudi Arabia Faisal bin Farhan and UN Secretary General Antonio Guterres. After posing for family photos, the leaders are participating in the session based on resilience, innovation, cooperation and sustainability, shaping the future for inclusive global growth. And now we go live to Prime Minister Narendra Modi's welcome remarks at Bharat Mandapam. The 10 partner countries of BRICS are Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Cuba, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan and Vietnam. After the conclusion of the session, Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral meetings with President of Kazakhstan, Kasym Yamart Tokayev, President of Philippines, Ferdinand R. Marcos Jr., President of Egypt, Abdel Fattah el-Sisi, President of South Africa, Cyril Ramaphosa and President of Burundi, Evariste Ndayishimiye.

बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: कभी किसी फिल्मी जोड़ी को देखकर लगता है कि ये दोनों कलाकार अभिनय नहीं कर रहे हैं, बस एक दूसरे के सामने हैं और कहानी अपने आप चल रही है। कभी उनके नोकझोंक पर मुस्कुराहट आती है, कभी उनकी आंखों में छुपा प्यार दिखाई देता है और कभी लगता है कि पर्दे पर चल रही कहानी शायद हमारी अपनी कोई पुरानी याद है, हमारी अपनी कोई दास्तान है। ऐसी ही एक जोड़ी है शाहरुख खान और काजोल की। एक तरफ बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान और दूसरी तरफ अपनी शरारती मुस्कान, बेबाक अंदाज और बेहद सहज अभिनय से दिल जीत लेने वाली काजोल। इन दोनों की कहानी शुरू हुई थी 1993 में बाजीगर से। ये उनकी पहली साथ वाली फिल्म थी बतौर लीड पे। लेकिन शायद उस समय किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये जोड़ी आने वाले सालों में हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार जोड़ियों में शामिल हो जाएगी और रिकॉर्ड बुक में इनकी फिल्मों के नाम शामिल हो जाएंगे। आज लो आ गई उनकी याद में। हम याद करेंगे शाहरुख खान और काजोल की उस फिल्मी दोस्ती को जिसे दर्शकों ने प्यार दिया और समय ने यादों में बदल दिया। 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद, देवजानी के साथ।

0: शाहरुख खान और काजोल के जोड़े की शुरुआत किसी मासूम प्रेम कहानी से नहीं हुई थी। बाजीगर में शाहरुख एक ऐसे किरदार में थे जिसके भीतर बदले की आग थी, जबकि काजोल का किरदार प्रिया उस जटिल कहानी में प्रेम और मासूमियत लेकर आता है। ये वो दौर था जब शाहरुख खान के एक के बाद एक अलग तरह के किरदारों ने दर्शक का अचंभित दर्शकों को वो कर रहे थे, और काजोल वो भी बिल्कुल नई ऊर्जा के साथ हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बना रही थी। बाजीगर ने दोनों की केमिस्ट्री की पहली झलक दी, लेकिन असली जादू अभी बाकी था। दो साल बाद दोनों फिर साथ आए करण अर्जुन में। इस बार कहानी अलग थी, माहौल अलग था, लेकिन पर्दे पर दोनों को साथ देखने का आकर्षण बरकरार रहा। करण अर्जुन में उनकी प्रेम कहानी मुख्य कहानी नहीं थी, फिर भी दोनों की मौजूदगी ने फिल्म के रोमांटिक पक्ष को मजबूत किया। और फिर आया वो साल जिसने इस जोड़ी को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया, 1995। क्या हुआ था वो बताएंगे इस कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद के इस गीत के बाद। सुनते रहिए, हमारे साथ बने रहिए 100.1 एफएम गोल्ड, खारा सोना पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। मैं देवचानी आप सभी के साथ।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

1995, राज सिमरन, बस दो नाम। लेकिन हिंदी सिनेमा के दर्शकों के लिए इन दो नामों में एक पूरा दौर बसता है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राज का शरारतीपन, सिमरन की संकोची सी मुस्कान, यूरोप की यात्राएं, सरसों के खेत और वो प्यार जो सिर्फ दो लोगों का नहीं था बल्कि परिवार की स्वीकृति और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की कहानी भी था। डीडीएलजे ने शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी को वो पहचान दी जिसके बाद दोनों का नाम एक दूसरे से अलग सोच पाना मुश्किल सा हो गया। राज और सिमरन की कहानी में सबसे खूबसूरत बात यह थी कि राज सिमरन को उसके परिवार से दूर ले जाने की कोशिश नहीं करता, वो उसके परिवार का दिल जीतना चाहता है और शायद इसी वजह से ये प्रेम कहानी इतनी अपनी सी लगी।

अगर राज और सिमरन ने हमें प्रेम सिखाया तो राहुल और अंजलि ने हमें बताया कि कभी कभी प्यार से भी ज्यादा खूबसूरत दोस्ती होती है। 1998 की कुछ कुछ होता है। राहुल और अंजलि कॉलेज के दोस्त हैं। अंजलि टॉमबॉयश है, राहुल की सबसे अच्छी दोस्त भी है और दोनों के बीच वो सहजता है जो सिर्फ बहुत गहरी दोस्ती में होती है। यशराज फिल्म्स के आधिकारिक विवरण में भी फिल्म की शुरुआत राहुल और अंजलि की इसी दोस्ती से होती है। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते हैं और बेहद करीबी दोस्त हैं। अंजलि प्यार करती है, राहुल समझ नहीं पाता। राहुल किसी और से प्यार कर बैठता है और अंजलि चली जाती है। फिर वक्त गुजरता जाता है और एक बच्ची अपनी माँ की अधूरी कहानी को पूरा करने निकलती है। यहाँ शाहरुख खान और काजोल की केमिस्ट्री का एक और रंग सामने आता है। मस्ती, दोस्ती, तकरार और फिर प्यार। और शायद इसी वजह से आज भी जब कोई कहता है कुछ कुछ होता है तो जवाब आता है तुम नहीं समझोगे।

0: बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।
1: ₹2001 की कभी खुशी कभी गम, राहुल और अंजलि अब बच्चे नहीं। यहाँ उनका रिश्ता प्रेम से आगे बढ़कर विवाह, परिवार और जिम्मेदारी का रिश्ता बन चुका है। शाहरुख और काजोल की ये जोड़ी इस बार हमें हंसाती भी है और हमें इमोशनल भी कर देती है। अंजलि की चुलबुलाहट, राहुल की संजीदगी और दोनों के बीच की वो सहज केमिस्ट्री जिसमें एक पल मजाक है और अगले ही पल भावनाएं आंखों तक आ जाती है। और फिर आया वो गीत, रेगिस्तान की पृष्ठभूमि, सूरज की रोशनी और दो प्रेमियों के बीच बेहद धीमी खूबसूरत सी बातचीत।

इसके बाद दोनों एक लंबे अंतराल के बाद फिर से साथ आए 2010 में माय नेम इज खान, और फिर आया 2015 कई सालों बाद पर्दे पर फिर वही नाम शाहरुख खान और काजोल फिल्म दिलवाले। ये रियूनियन अपने आप में दर्शकों के लिए एक इवेंट सा बन गया था। फिल्म में एक्शन, कॉमेडी और रोमांस को मिलाया, लेकिन दर्शकों की निगाहें बार बार उस जोड़ी को तलाशती रही। क्यों? क्योंकि कुछ जोड़ियां केवल फिल्मों में नहीं रहती, वे हमारी यादों का हिस्सा बन जाती है। बाजीगर की शुरुआत करण अर्जुन की झलक, डीडीएलजे का राज सिमरन, कुछ कुछ होता है का राहुल अंजलि, के थ्री जी का पति पत्नी का रिश्ता, माय नेम इज खान का सेंसिटिव पर मच्योर प्रेम, और फिर दिलवाले का पुनर्मिलन। आखिर क्या है शाहरुख और काजोल में? शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है। शायद इसलिए कि दोनों एक दूसरे को

पूरा करते हैं। शाहरुख का एक अलग सा चार्म, काजोल की बेबाक ऊर्जा, शाहरुख की आंखों की शरारत, काजोल की हंसी और दोनों का वो नेचुरल टाइमिंग, जब वे स्क्रीन पर साथ होते हैं तो लगता है संवाद जैसे लिखे नहीं गए हैं, बस उनके बीच यूं ही हो रहे हैं। और शायद सबसे खास बात यह है कि उनकी जोड़ी एक ही तरह की नहीं रही, उनके प्रेम ने अलग अलग रूप दिखाए। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और कुछ लोग हमारी यादों में बस जाते हैं। शाहरुख और काजोल की जोड़ी भी ऐसी ही है। राज और सिमरन को याद कीजिए, राहुल और अंजलि को याद कीजिए, या फिर बस उस पुराने सिनेमाघर को याद कीजिए जहां पर्दे पर पहली बार ये दोनों साथ दिखाई दिए थे। समय बदल गया, फिल्में बदल गई, कहानी कहने का अंदाज भी बदल गया, लेकिन कुछ केमिस्ट्री ऐसी होती है जिसे वक्त भी पुराना नहीं कर पाता। और शायद इसलिए जब भी कहीं से तुझे देखा तो ये जाना सनम सुनाई देता है, तो सरसों के खेतों के बीच दो चेहरे दिखाई देते हैं, जब कुछ कुछ होता है सुनाई देता है तो कॉलेज की वही शरारती दोस्ती याद आ जाती है, और जब सूरज हुआ मध्यम बचता है तो लगता है जैसे हिंदी सिनेमा ने प्यार को कुछ पल के लिए रोक लिया हो। इसलिए तो लो आ गई उनकी याद, शाहरुख खान और काजोल की, एक ऐसी फिल्मी जोड़ी की जिसे पर्दे ने बनाया, दर्शकों ने अपनाया और यादों ने हमेशा के लिए अपना लिया। मैं देवजानी थी आप सभी सुनने वालों के साथ, लेकर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद, शाहरुख और काजोल की जोड़ी। फिलहाल ये आखिरी गीत आप सभी सुनने वालों के लिए, सुनते रहिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और व्यवधानों ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही।
1: महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिसरप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
1: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन

0: यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
1: और जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित के पास। अंकित, ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आज अंतिम दिन सम्मेलन में क्या कुछ खास होने वाला है?
2: जी कनक, आपको बता दूं कि भारत चौथी बार ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है। वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए इस समूह में अब 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार पिछले 5 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो ये दिखाता है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। इस शिखर सम्मेलन के पहले दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया।
1: जी,
2: इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। कनक, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वह नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। जी कनक,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद अंकित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादेह से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं डिगा सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले 3 दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today said pandemics, climate disasters and supply chain disruption have demonstrated that in today's interconnected world, no crisis remains confined to a single region. Addressing the open session of BRICS Summit at Bharat Mandapam in New Delhi, Mr. Modi said BRICS nations have therefore placed special emphasis on enhancing resilience among the grouping. In the session on resilience, innovation, cooperation and sustainability, Mr. Modi also emphasized on timely identification of challenges, preparation for them and taking immediate action. He said that a consensus has been reached on a BRICS integrated early warning system for the prevention of and response to infectious diseases. He added that early warning data integration guidelines have been formulated for disaster management.
0: आज के interconnected world में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने BRICS समूह में resilience बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पांस के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
3: Prime Minister Modi cautioned that weaponization of technology and critical minerals can become a hurdle for progress. He said BRICS nations have stressed on inclusivity in adoption of technology.
0: Technology aur critical minerals ka weaponization hamari saajha pragati mein badha ban sakta hai. Isliye humne

बाद प्रधानमंत्री कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा वे नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी बैठक करेंगे। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादे से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं टिका सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले तीन दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर, बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला भी दिल्ली में ही खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता अस्सीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। इंडोनेशिया में 240 से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल लापता। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है।

0: ही सस्टेनेबिलिटी का आधार है, ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
1: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स से डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है।
0: स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। ये हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
0: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
0: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
1: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारे संवाददाता दीपेंद्र मौजूद है। दीपेंद्र, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?
2: देखिए जिसका आपको बता दूं कि वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए ब्रिक्स समूह में अभी 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी और वैश्विक व्यापार के लगभग 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में 2x से ज्यादा बढ़ा है, जो दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस कड़ी में अलग अलग विषयों पर लगभग 350 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज और समर्थक के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। जी कनक,
1: संबोधन की मुख्य बातें क्या थी प्रधानमंत्री की?
2: देखिए संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारे बातें की जिसमें सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात थी। उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी साउथ की आवाज, जो वैश्विक भूमिका जो है ग्लोबल साउथ, उस पर उनकी रही। जी
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों सहित नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान। अक्षित, इन बैठकों में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
3: जी कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आज भी कई अहम द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिनों से लगातार दुनिया के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठकों का ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों से के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बैठकें निर्धारित हैं। यानी आज का दिन भी कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन बैठकों पर सबकी नजर टिक, जिनके माध्यम से भारत को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स के मंच से इतर प्रधानमंत्री मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की कूटनीति सक्रियता और वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जी कनक,
1: धन्यवाद अक्षित। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व

0: में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
1: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और बहुत से विषयों पर चर्चा हुई। भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में बहुत से ठोस कदम भी ब्रिक्स में भी उठाए गए।
0: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की विदेश नीति सफल हुई है।
2: ये बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा है। और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का जीडीपी पूरे यूरोप अमेरिका के जीडीपी से ज्यादा है। और जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में जो हुआ, एक जबरदस्त कंडेमनेशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। अगस्त 2025 की तुलना में इस बार माल ढुलाई से मिलने वाले राजस्व में भी 6.27% की वृद्धि हुई है। मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को शुरू हुए आज एक वर्ष हो गया है। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में श्री गणेश ज्ञानरात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारत एक समृद्ध और तेजस्वी ज्ञान परम्परा का स्वामी है।
3: तो जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, संस्कार, भाषा, अभिलेख, परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। और जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अभिलेख, भाषाएं, व्याकरण की रक्षा करता है, वो कितने भी साल गुलाम रहे, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत इसका उदाहरण।
0: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड़ और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दादरा और नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है। अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गिर सोमनाथ सहित 13 अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह 6 बजे तक राज्य के 193 तहसील में बारिश दर्ज की गई। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। भारत ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित बेतरावती क्षेत्र में यातायात और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए 70 मीटर लंबे बेले ब्रिज के पुर्जों की पहली खेप भेजी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पुल के पुर्जों की ये पहली खेप कल हेटौड़ा में नेपाल के सड़क प्रभाग को सौंप दी गई। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान

पाकिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर सत्र में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकार किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा। उन्होंने सभी परिणामों को समय सीमा के भीतर ऐसे में बदलने की जरूरत पर बल दिया जिनका जमीनी स्तर पर असर दिखाई दे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है। दुनिया अब इस समूह से ठोस परिणामों की आशा करती है। इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में श्री मोदी ने कहा कि महामारियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं ने ये दिखा दिया है कि परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। उन्होंने कहा कि इसलिए ब्रिक्स देशों ने इस समूह के भीतर लचीलापन और संकटों से निपटने की क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने बताया कि संक्रामक प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को ग्लोबल साउथ की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डाइवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स रसद आपूर्ति श्रृंखला, सहयोग प्रारूप आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक विश्वसनीय और सुदृढ़ बनाने में मदद करेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्थ तोकायेव के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बैठक की। प्रधानमंत्री पिछले दो दिन से दुनिया भर के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। वे आज दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ भी बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। इन बैठकों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करने, आपसी सहयोग को और मजबूत करने तथा क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा करने का अवसर मिलने की आशा है। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की जबकि अगस्त 2025 में ये आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 2040 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने के बाद लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। जहाज के अंतिम ज्ञात स्थान के आसपास तलाश अभियान जारी है। ये नौका पूर्वी जावा से दक्षिण कालीमंतन प्रांत जा रही थी। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। भारत और श्रीलंका दोनों ही टीमें बिना कोई मैच हारे फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today said BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions, and the discussions over the past 2 days have further strengthened this conviction. He said this during his concluding remarks at the BRICS session on resilience, innovation, cooperation and sustainability at the Bharat Mandapam in New Delhi. Mr. Modi hoped that the New Delhi Declaration adopted at BRICS summit will provide clear direction for shared vision and future cooperation. He stressed on the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा. हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा. हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे.
2: Saying that BRICS is poised to enter its third decade, Mr. Modi asserted that the world now expects concrete results from the grouping and not just ideas and commitments. He expressed confidence that BRICS will certainly live up to these expectations through collective efforts. Prime Minister extended his best wishes to China as the next chair of BRICS. Earlier addressing the open session of the BRICS summit, Prime Minister Modi said, pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have demonstrated that in today's interconnected world, no crisis remains confined to a single region. Prime Minister Narendra Modi today held a bilateral meeting with President of Kazakhstan, Kasym Jomart Tokayev, on the sidelines of the BRICS summit. He also held meetings with President of Egypt Abdel Fattah al-Sisi and President of Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. Mr. Modi has been holding back-to-back bilateral talks with global leaders over the past 2 days. Finance Minister Nirmala Sitharaman today met Uzbekistan's Deputy Prime Minister and Minister of Economy and Finance Jamshid Kuchakarov in New Delhi on the sidelines of the BRICS summit. In a social media post, Ms. Sitharaman said, during the meeting, both sides discussed strengthening bilateral economic and financial cooperation and exchange views on areas of mutual interest. Union Home Minister Amit Shah today called upon the Indian gems and jewellery industry to ensure that the entire ecosystem and manufacturing chain of lab-grown diamonds remains firmly in Indian hands. Addressing the 52nd Indian Gems and Jewellery Awards ceremony in Mumbai, Mr. Shah said the nature of the diamond trade is changing with the emergence of lab-grown diamonds. He said the lab-grown diamond market in terms of volume is expected to become nearly 50 times the size of the current diamond market, describing it as a monumental opportunity for India. Early in the day, the Home Minister inaugurated a specially curated exhibition of manuscripts titled Sri Ganesh Gyanarthi at the Asiatic Society of Mumbai. In Indonesia, the death toll has risen to 6 after a ferry carrying more than 240 people overturned due to bad weather in the Java Sea today. Nearly 140 passengers and crew members remain missing. Indonesian rescuers said at least 107 people have been rescued so far as search and rescue operations continue around the vessel's last known location. The ferry was travelling from East Java to South Kalimantan and had departed for Surabaya for the Banjar, Masin and Borneo Island. In hockey, India's women's team has won the Junior Asia Cup title for the third consecutive time. The defending champions defeated China 1-0 in the final at Mochi in China this afternoon. Sanika Chandrakant Mane scored the only goal of the match in the 17th minute to help India secure the victory. With this triumph, India completed a hat-trick of Junior Asia Cup titles, having also won the championship in 2023 and 2024. In the Women's T20 Asia Cup Cricket Final, India will face defending champions

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है, बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है, और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता निर्माण पर सत्र में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकार किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के लिए सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है और दुनिया अब इस समूह से ठोस परिणामों की आशा करती है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रिलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने नई दिल्ली सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी ब्रिक्स देशों, सहयोगी देशों और उनकी टीमों की सराहना की। इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में श्री मोदी ने कहा कि महामारियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं ने यह दिखा दिया है कि परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोगाइफ के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्निनेंड आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बैठक की। प्रधानमंत्री पिछले दो दिन से दुनिया भर के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। वे आज दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों तथा नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी बैठक करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और अर्थव्यवस्था तथा वित्त मंत्री जमशीद कुचकरोफ से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हित से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में अपने विचार साझा किए। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में आयोजित 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो से इसके व्यापार का स्वरूप बदल गया है। उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो का बाजार मात्रा के लिहाज से वर्तमान हीरा बाजार से लगभग 50 गुना बड़ा होने की उम्मीद है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 140 यात्री और चालक दल के सदस्य अब भी लापता हैं। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने लगातार तीसरी बार जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन में खेले गए फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराया। वहीं दुबई में महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में भारत का मुकाबला आज 8 बजे मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर
1: 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय की प्याली, यादों का एक प्यारा सा एहसास होता है और सुरों की महफिल साथ हो तो मन को खुश कर देता है। चाय एंड क्लासिक्स का रंग बहुत ही निराला है, होती है साथ में जानकारी, मनोरंजन और सुंदर उजियाला, जहां गीतों की खुशबू, किस्सों का साथ, पुराने धुनों से सजी हर एक बात, कभी कलाकारों की अनसुनी कहानी, कभी संगीत की मधुर जुबानी, चाय की चुस्कियों के संग यादों का सफर। चलिए तय करते हैं आपके साथ, मैं हूं संचिता। 5:16 और शुरू करेंगे एक गीत के साथ, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज, द फिल्म द ग्रेट क्रैमलर। आनंद बख्शी के बोल को आर डी बर्मन ने संगीतबद्ध किया। चाय और क्लासिक्स, आपके साथ हूं मैं संचिता।

100.1 एफएम गोल खरासोना के अंतर्गत कार्यक्रम है चाय और क्लासिक्स और इस वक्त 5:23 हुए हैं। आपके साथ हूं मैं संचिता। चलिए करते हैं इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। कंडोनी सोरेन, जी हाँ, कंडोनी सोरेन, जिन्हें स्थानीय लोग और मीडिया सम्मान से जंगल की रानी शेरनी ऑफ जंगल कहते हैं, झारखंड के जामशेदपुर की एक असाधारण आदिवासी महिला। उन्होंने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से पर्यावरण संरक्षण की एक नई मिसाल कायम की। कंडोनी सोरेन झारखंड के जमशेदपुर जिले के मुसाबनी ब्लॉक के सारक घुटू गांव की रहने वाली है और वो पेशे से जमशेदपुर पुलिस में होमगार्ड के रूप में काम करती है, लेकिन पुलिस की ड्यूटी के अलावा उनकी एक और बड़ी पहचान है, वो है पर्यावरण रक्षक। बचपन से ही उन्हें बहुत लगाव था जंगलों से, और फिर जब उन्होंने देखा कि उनके गांव के पास एक जंगल में हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई इलीगल ट्री फेलिंग लगातार बढ़ रही है और लालची टिम्बर माफिया प्राकृतिक संपदा को नष्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने उसके खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। सिर्फ शिकायतों से काम नहीं बनते देखा तो फिर खुद कमान संभालने लगी। कंडोनी ने अकेले शुरुआत की, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने गांव की अन्य आदिवासी महिलाओं को एकजुट किया, वन रक्षा समिति बनाई। आज उनके इस अभियान में गांव की लगभग 40 से अधिक महिलाएं और साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। कंडोनी और उनकी टीम ने मिलकर अपने गांव के पास फैले करीब 250 एकड़ जो कि लगभग 100 हेक्टर जंगल को बचाने और उसकी रक्षा करने का जिम्मा अकेले उठाया है। ये महिला समूह तीर धनुष कुल्हारी और लाठी जैसे अपने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर दिन रात जंगलों की नियमित गश्त यानी कि पेट्रोलिंग करती है।

बीते 15 वर्षों से लगातार की जा रही ये रखवाली का नतीजा ये हुआ कि क्षेत्र में पेड़ों की अवैध जो कटाई थी वो 80 से 90% तक कम हो गई। कंडोनी सोरेन की सबसे खास बात यह है कि पुलिस होमगार्ड की अपनी आधिकारिक ड्यूटी खत्म करने के बाद वो आराम करने के बजाय सीधे जंगल की ओर रुक करती थी। जब भी उन्हें जंगल में किसी बाहरी व्यक्ति या पेड़ काटने वालों के घुसने की भनक मिलती तो वो तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाती। इंसान में इच्छा होनी चाहिए, बात अपने आप बन जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं लता मंगेशकर के गीत के साथ। फिल्म का नाम स्वामी। अमित खन्ना ने गीत के बोल लिखे और राजेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स चाय और क्लासिक्स 100.1 एफएम गोल्ड पर चाय और क्लासिक्स
2: 100.1 एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स और अब एक जरूरी घोषणा ۱۳۸ویں ڈاک عدالت ایوم پینشن عدالت کی اور سے مکھے پوسٹ ماسٹر جنرل پشچم بنگال سرکل کی ادھیکشتا میں دنانک 28/10/2026 کو اپرہن 12:30 مکھے پوسٹ ماسٹر جنرل کا کارکرم کاریالے پشچم بنگال سرکل یوگا یوگ بھون P36 سی آر ایونیو کولکاتہ 7000012 में गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों के पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निर्देशक, डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्कल, P36 सी आर एवेन्यू, कोलकाता 7000012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी इस प्रकार है cpmg_wb@indiapost.gov.in या adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 30/9

2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता के अनुरोध हैं कि वे उपयुक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट यानी कि वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निर्देशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 033-221-20-250 या 033-221-20-612 या 033-221-20-500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना आवश्यक है। उपयुक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विविध मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। ये घोषणा यहीं पर समाप्त होती है। आगे बढ़ेंगे एक गीत के साथ। कार्यक्रम है 100.1 FM गोल खरासोना के अंतर्गत चाय और क्लासिक्स। आवाज है अमित कुमार की फिल्म लव स्टोरी। आनंद बख्शी के बोल को R.D. बर्मन ने संगीतबद्ध किया। 5:37 58 सेकंड आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ।

0: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: सरकारी उद्यम और तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण जीवन का एक बहुत बड़ा आधार किसान है। किसान अपने परिश्रम से खेतों में अन्न उगाता है और पूरे देश का पेट भरने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन कृषि कार्य हमेशा आसान नहीं होता। बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक और अन्य कृषि आवश्यकताओं पर किसानों को लगातार खर्च करना पड़ता है। मौसम की अनिश्चितता, प्राकृतिक आपदाएं और बाजार की परिस्थितियां भी किसानों की आय को प्रभावित कर सकती हैं। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे संक्षेप में पीएम किसान कहा जाता है, ये योजना किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के साथ जोड़ता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका पूरा

वित्त पोषण भारत सरकार करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेती योग्य भूमि वाले पात्र किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि 3 समान किश्तों में प्रत्येक 4 महीने के अंतराल पर सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। इस प्रकार प्रत्येक किश्त की राशि 2,000 रुपए होती है। सरकार का उद्देश्य ये सहायता किसानों की

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा भारत सरकार ने वर्ष 2018 में की थी। योजना को 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी माना गया। प्रारंभ में ये योजना छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। बाद में ये योजना का विस्तार करते हुए सभी पात्र भूमिधारी किसान परिवारों को इसके दायरे में शामिल किया गया, बशर्ते वो निर्धारित पात्रता और अपवर्जन संबंधी शर्तों को पूरा करते हो। इस विस्तार का उद्देश्य देश भर के अधिक से अधिक पात्र किसान तथा प्रत्यक्ष आय सहायता को पहुंचाना। बात करते हैं पीएम किसान के उद्देश्य के बारे में। किसानों को आय सहायता प्रदान करना तो है ही, कृषि आय कई परिस्थितियों पर निर्भर करती है। किसानों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करके सरकार उनके वित्तीय बोझ को कम करना चाहती है। कृषि निवेश में सहायता भी की जा रही है। बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण और अन्य आवश्यकताओं की जो खरीद है उसमें किसानों को आर्थिक सहयोग मिल सकता है। इसके जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। पीएम किसान के जरिए जब किसानों की क्रय शक्ति बढ़ती है तो ग्रामीण बाजारों और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरों को भी बढ़ावा दे रहा है। जैसे कि योजना की राशि जो है सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इससे मध्यस्थों की जो भूमिका है, मीडिएटर्स की जो भूमिका है वो कम करने और भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों की वित्तीय सुरक्षा भी हो रही है। योजना जो है पीएम किसान किसानों को एक निश्चित न्यूनतम आय सहायता प्रदान करती है जिसमें आकस्मिक कृषि खर्चों का सामना करने में सहायता मिल सकती है। योजना के प्रमुख लाभ, पीएम किसान का सबसे महत्वपूर्ण लाभ अगर हम इसके बारे में बात करें, नियमित आर्थिक सहायता के अलावा पात्र किसान जो है वो परिवारों को वर्ष में 6,000 रुपए मिलते हैं और ये राशि 3 किस्तों में दी जा रही है। प्रमुख अपवर्जन श्रेणियों के प्रकार की बात करते हैं। संस्थागत भूमि धारक हो सकते हैं वर्तमान या पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी, वर्तमान या पूर्व मंत्री, सांसद या विधायक जैसे निर्धारित राजनीतिक पदाधिकारी, केंद्र या राज्य सरकार के कुछ सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी या कर्मचारी, 10,000 रुपए या उससे अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले कुछ सेवानिवृत्त पेंशन भोगी, निर्धारित अपवादों को छोड़कर पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या फिर चार्टर अकाउंटेंट जैसे पंजीकृत पेशेवर जो सक्रिय रूप से अपना व्यवसाय करते हैं, इन सभी को जो है अपवर्जन कैटेगरी में रखा गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किसान कल्याण योजना है जिसका उद्देश्य पात्र भूमिधारी किसान परिवारों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करना है। 2018 में शुरू हुई ये योजना 2026 तक भारत की प्रमुख DBT आधिकारिक योजनाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी है। वर्ष 2026 में इसकी प्रासंगिकता की बात करें, किसानों को नियमित आर्थिक सहायता दे रही है, डिजिटल भुगतान व्यवस्था और सरकारी योजना तक सरल पहुंच की आवश्यकता लगातार बनाई हुई है। भविष्य में भी पीएम किसान योजना कृषि क्षेत्र की आर्थिक सुरक्षा और ग्रामीण विकास की नीतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। हालांकि किसान कल्याण केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं होना चाहिए। कृषि क्षेत्र में समग्र विकास के लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर सिंचाई, उचित बाजार

0: व्यवस्था, फसल बीमा, मजबूत ग्रामीण बुनियादी ढांचे की भी आवश्यकता है और इसकी पहल भी की जा रही है। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में।
1: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की। परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड।

इस खूबसूरत गीत को आप सुन रहे थे फिल्म सागर से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। जावेद अख्तर के बोल को आरडी बर्मन ने संगीतबद्ध किया। रूबरू होंगे हम अंग्रेजी और हिंदी न्यूज़ यानी खबरों से। 6:10 पर वापस आएंगे इसी कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है चाय और क्लासिक्स। आप थे इस कार्यक्रम में संचिता के साथ और आगे बढ़ेंगे फिलहाल एक गीत के साथ भूपेंद्र सिंह की आवाज। फिल्म का नाम दासी, आनंद बख्शी ने लिखा और रविंद्र जैन ने संगीतबद्ध किया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने आज लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता निर्माण पर सत्र में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकार किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है और दुनिया अब इस समूह से ठोस परिणामों की आशा करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने नई दिल्ली सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी ब्रिक्स देशों, सहयोगी देशों और उनकी टीमों की सराहना की। इस

0: पहले सम्मेलन के खुले सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमियों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को ग्लोबल साउथ की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डाइवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जुमार्त तोकायेव के साथ द्विपक्षीय बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मुलाकात में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। उन्होंने मौजूदा आसियान अध्यक्ष के तौर पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फिलीपींस की भागीदारी का स्वागत किया। श्री मोदी दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति तथा नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ और द्विपक्षीय बैठकें करने वाले हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि महामारी से निपटने की तैयारियों में भारत एक दशक पहले की स्थिति से बहुत आगे निकल चुका है। देश ने ऐसी जीवंत जैव अर्थव्यवस्था, टीका विकसित करने की बेहतर क्षमता और वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है जिनसे भविष्य में महामारियों से निपटने की वैश्विक तैयारियों में योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में महामारी के लिए तैयारी नवाचार गठबंधन के बोर्ड और निवेशक परिषद के लिए आयोजित एक समारोह में कही। चीन के मोकी में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। महिला वर्ग के फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराया जबकि पुरुष वर्ग फाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से शिकस्त दी। जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आज प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स SL3 में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi today said BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions, and the discussions over the past 2 days have further strengthened this conviction. He said this during his concluding remarks at the BRICS session on resilience, innovation, cooperation and sustainability at the Bharat Mandapam in New Delhi. Mr. Modi hoped that the New Delhi Declaration adopted at BRICS summit will provide clear direction for shared vision and future cooperation. He stressed on the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver लास्ट माइल इंपैक्ट।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
2: Saying that BRICS is poised to enter its third decade, Mr. Modi asserted that the world now expects concrete results from the grouping and not just ideas and commitments. He expressed confidence that BRICS will certainly live up to these expectations through collective efforts. Prime Minister extended his best wishes

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: हंड्रेड पॉइंट वन एफ एम गोल्ड पर चाय और क्लासिक्स का दूसरा भाग 6:10 पर फिर आपसे रूबरू हो रहे हैं। और ये जो वक्त है ये 6:30 तक है आपका और हमारा सफर। उसके बाद आप जुड़ेंगे जिस कार्यक्रम के साथ, वो है मार्केट मंत्रा। उससे भी खास बात यह है कि आज 13 सितंबर है और 13 सितंबर 1973 किसी का जन्मदिन है जो कि आज है। इससे पहले कि हम बात करें उनके बारे में

दिल, सुन लेते हैं उन पर फिल्माया हुआ एक गीत। फिल्म का नाम दिल क्या करे। आनंद बख्शी के बोल को जतिन ललित ने संगीतबद्ध किया। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज। कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स, आपके साथ हूं मैं संचिता।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स। चाय और क्लास

चौधरी के नाम से जानते हैं, एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री मॉडल जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में ही काम किया। 13 सितंबर 1973 को दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भी वहीं से पूरी की। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने मॉडलिंग और कई टेलीविजन विज्ञापनों में काम किया तथा एक म्यूजिक चैनल पर वीडियो जॉकी यानी कि वीजे रही। 1997 शुरुआत की उन्होंने परदेश और फिर उन्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। निर्देशक सुभाष घई ने उन्हें खोजा और फिल्म परदेश में शाहरुख खान के विपरीत मुख्य भूमिका दी। ये फिल्म सुपरहिट रही और वो रातों रात स्टार बन गई। अपनी पहली ही फिल्म परदेश के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। डार्क द फायर, धड़कन, प्यार कोई खेल नहीं और दिल क्या करे जैसे कई लोकप्रिय फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया इन्होंने। साल 2006 में व्यवसायी वास्तुकार से उनकी शादी हुई लेकिन आपसी मतभेद के कारण 2013 में इनका विच्छेद हुआ। कुछ वर्ष पहले उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का भी सामना किया। हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की एक बहुत ही लोकप्रिय अभिनेत्री एवं मॉडल महिमा चौधरी की, जो फिल्मों में आने से पहले ऋतु चौधरी के नाम से जानी जाती थी। 1990 के दशक में उत्तरार्ध और 2000 के दशक की शुरुआत में कई बड़ी फिल्मों में इन्होंने काम किया। मॉडलिंग तो वो करती ही थी लेकिन इसके अलावा जिन फिल्मों की वजह से वो पॉपुलर हुई वो है परदेश, डार्क द फायर, दिल क्या करे, धड़कन, लज्जा, बागवां और दिल है तुम्हारा जैसी चर्चित फिल्में। आगे बढ़ेंगे एक और गीत के साथ। डार्क द फायर से उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाज, समीर ने गीत के बोल लिखे और राजेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया। 100.1 FM गोल खरा सोना के अंतर्गत कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स, आपके साथ हूं मैं संचिता।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स,
1: चाय और क्लासिक्स एफएम गोल पर। और जाते जाते, क्योंकि आपका हमारा जो सफर है वो 6:30 तक ही है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का बोलबाला चारों तरफ है। स्वागत किट में आपको पता है बिहार के सत्तू और मखाना को शामिल किया गया है। बिहार का स्वाद और वैश्विक स्तर पर पहुंच चुका है। हमारे पारंपरिक सत्तू से लेकर बिहार के प्रतिष्ठित मखाने तक बिहार के स्वाद को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के आधिकारिक स्वागत और मीडिया किट में अपनी जगह बना ली है। ये बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि स्थानीय स्वाद अब वैश्विक मंच पर जाने वाला है। इसी के साथ इजाजत दीजिए संचिता को, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कार्यक्रम में और बहुत जल्द 7:32 पर एफएम गोल्ड

नहीं बल्कि एफएम रेनबो पर लेकर आएंगे यादों की बारात। तब तक के लिए सुनते रहिए इस गीत को और 6:30 पर आप रूबरू होंगे मार्केट मंत्रा कार्यक्रम के साथ। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज, कामचोर है फिल्म का नाम, इंदीवर के बोल को राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls on mutual fund related queries. But do remember that we do not address fund specific queries. To connect with us, you can call us on 2331 4444, 2331 0481, and 2371 7106, and of course do prefix the code 011. Along with Subodh Mishra, I am Sarabjeet Kaur.
1: Dhanyawad Sarabjeet, aur namaskar shrotao, karobari khabron ke sath Market Mantra hazir hai. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन

0: हैं 2331-4444-2331-0481 और 2371-7106। और जैसा कि सरबजीत पहले ही बता चुकी है, हम किसी खास म्यूचुअल फंड्स के बारे में सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। श्रोता, इससे पहले इन नंबरों से पहले, हमारे फ़ोन नंबर से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मित्र में आपका स्वागत है।
1: जी, धन्यवाद।
0: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
2: Prime Minister Narendra Modi says New Delhi Declaration adopted at BRICS Summit will provide clear direction for shared vision and future cooperation. Global crude oil prices surged around 9% last week and domestic investors to focus on US Federal Reserve's policy decision, macroeconomic data and geopolitical developments for cues next week.
0: Pradhan Mantri Narendra Modi ne kaha ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में स्वीकृत नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान करेगा। पिछले सप्ताह कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में बढ़त और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत निर्णय, आर्थिक आंकड़ों और भू राजनीतिक घटनाओं पर।
2: And before we go just any further in the program, may we remind our listeners, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: आइए खबरों का सिलसिला शुरू करें। आज की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का इकोसिस्टम है और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर सत्र के समापन भाषण में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकृत नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान करेगा।
3: हम आशा करते हैं इस समिट से, उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करें, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में श्री मोदी ने कहा कि महामारियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं ने यह दिखा दिया है कि परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। प्रधानमंत्री ने आगाह किया है कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ब्रिक्स लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखला सहयोग प्रारूप आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक भरोसेमंद और सुदृढ़ बनाने में मदद करेगा। नवाचार के तहत ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटर्स को आपस में जोड़ेगा। उन्होंने बताया कि भारत ने नए और बड़े पैमाने पर लागू होने वाले समाधानों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स स्टार्टअप नवाचार कोष का प्रस्ताव रखा है।
3: इनोवेशन के अंतर्गत ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क हमारे स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स को आपस में जोड़ेगा। इनोवेटिव और स्केलेबल सॉल्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए हमने ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड का प्रस्ताव रखा है। ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर

0: किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा.
1: And I can see our first caller connecting from Delhi. Jeevan ji, swagat hai aapka. Sawal puchhe.
2: Namaste, Varkar Gondia team. मैं currently SIP कर रहा हूँ पराग वारेकर फ्लेक्सी के 10,000 बंधन स्मॉल कैप 8,000 और मोतीलाल ओसवाल मीट लार्ज कैप और मल्टी कैप में 8,000 और एक न्यू जो था NFO आया था HDFC बैंक का निफ्टी 550 और 2525 का अराउंड 30,000 के आसपास इन सब में मैं कर रहा हूँ SIP. तो एक ये जानना चाह रहे मेरा पोर्टफोलियो कैसा है और भी मैं 5,000 इंक्रीज करना चाहता हूँ इन्हीं में करूँ या किसी अदर फंड में करूँ ये फंड कैसे हैं क्या मेरे को वही लार्ज कैप फंड एलोकेट एडिशनल लेना चाहिए या यही मेरी नीड पूरी कर दूंगी.
3: जीवन जी मेरे हिसाब से आपके फंड्स का चुनाव ठीक है. आप कोई नया फंड ऐड करने से मुझे नहीं लगता कि कोई खासा ऐसी कोई कमी है आपके पोर्टफोलियो में जो आप जिसकी आप पूर्ति के लिए आपको नए फंड की आवश्यकता है. आप इन्हीं फंड्स में आप SIP के माध्यम से लगा रहे हैं लंबे समय का अगर ये पैसा है तो उसके लिए मेरे ख्याल ये पोर्टफोलियो उपयुक्त है और इसी में आप जो भी इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट आपके पास है आप इन्हीं फंड्स में अपना एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं.
4: जी और अभी आशुतोष अगर हम फंड्स की हालत देखें अगर खासकर अभी जो पूरी दुनिया के हालात पर हम गौर कर रहे हैं और कई तरह के फंड्स पर हमारे जो श्रोता हैं उनकी दिलचस्पी जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में जब देखा था हमने कई श्रोता पूछते हैं कि विदेशी फंड्स में हम कैसे निवेश करें और किस तरह से हमें उसका लाभ मिल सकता है इस पर हम चर्चा करेंगे आगे. अभी चलते हैं एक खबर है हमारे पास कच्चे तेल से जुड़ी हुई.
1: ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस नॉट शार्प वीकली गेन्स अमिड एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस ड्यूरिंग द वीक. ब्रेंट क्रूड नवंबर फ्यूचर्स सर्ज्ड 8.7% टू सेटल एट $104 and 61 cents per barrel. West Texas Intermediate Crude October futures soared 9.4% to end at $100 and 5 cents per barrel. Now we go over live to our correspondent in Dubai, Manish Shiva, for more updates from the region. Manish, oil prices rose sharply last week. Could you please provide us a quick recap of the developments in West Asia that led to this surge and also if you could tell us about the latest situation on the ground?
5: Hi, Sarabjit. Of course, the resumption of US-Iran fighting early this month. Then, of course, the developments in Yemen, which started putting pressure on the Red Sea route of oil. And most recently, the drone attacks on the Saudi East-West pipeline. This route is estimated to carry almost 4 to 5% of global oil supply. Now, that has been temporarily shut. So, of course, we've seen a lot of pressure on the oil prices. The Brent is around 104. WTI is also around 100. Now, in terms of what is happening currently in the last 24 hours, there have been fresh claims by the Houthis of more attacks on Saudi infrastructure. This morning, an Iranian commercial vessel was hit by a suspected projectile in the Strait of Hormuz. So no relief there yet. In the midst of this all, though, there are some chances of diplomatic engagement tomorrow, that is on Monday. Iran and at least some Gulf states are scheduled to meet in Oman and discuss the possible way outs of reopening Strait of Hormuz. Not the complete reopening is what has been reported, but a certain movement may be allowed. However, it needs to be seen if all the Gulf states will actually participate in this meeting. And also, without the involvement of the United States, whatever arrangements are actually worked out, we'll need to see if they actually are helpful in resolving this subject.
1: Well, after that update from Manish from Dubai, let's hear what Harish has to ask our next caller from Meerut. Harish ji, sawal puche.
6: मैम मेरा सवाल ये है कि मेरे पास स्मॉल कैप मिड कैप फ्लेक्सी कैप और कॉन्ट्रा फंड है. स्मॉल कैप में मेरी 30,000 की सिप है, मिड कैप में 30,000 की, फ्लेक्सी कैप में 25,000 की, कॉन्ट्रा में 10,000 की. तो क्या ये 10 से 12 साल के टाइम होराइजन में एक बढ़िया कदम है ये मैं पूछना चाह रहा हूँ और ये कंटिन्यू रहेगा 10 से 12 साल. बस ये है कि हो सकता है अगर इतना पैसा मैं इन्वेस्ट ना कर पाऊँ तो थोड़ा कम कर दूंगा या थोड़ा बढ़ा दूंगा लेकिन करता रहूंगा. अब बस यही मेरे

0: उनसे पूछना था सर से कि क्या ही सही वो है चुनाव मेरा।
1: जी आपने बताया तकरीबन आपका आधा या आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसा आपका स्मॉल एक स्मॉल और एक मिड कैप फंड में लग रहा है और बचा हुआ आपका एक फ्लेक्सी और कॉन्ट्रा में। देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस पोर्टफोलियो में कोई बुराई नहीं है अगर आपके फंड्स का चुनाव सही है। बस आप ये ध्यान रखिएगा आपके पोर्टफोलियो में क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप की मात्रा काफ़ी अधिक है, इस पोर्टफोलियो से मुझे लगता है कि कम से कम 60% आपका पैसा स्मॉल और मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में निवेशित हो रहा होगा। तो ये पोर्टफोलियो थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, जब मार्केट उतार चढ़ाव के दौर से निकलेगी, जब भी मार्केट में क्रैश आएगा शायद आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरेगा, तो वो उतार चढ़ाव से आपको उस दौर में आपको संयम बना के रखना होगा। ये एक फेयरली एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल है, लेकिन अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है तो इस पोर्टफोलियो में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको मार्केट गिरने से घबराहट होती है तो मुझे लगता है कि उस सर्कमस्टांस में स्मॉल और मिड कैप में आपको अपना एक्सपोजर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए।
2: मतलब उससे पैसे हटाकर आप फ्लेक्सी कैप में या किस तरह के फंड्स में डाल सकते हैं?
1: जी तो पहले तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो आप कुछ ना करें, आप इस पोर्टफोलियो को बरकरार रखें
2: जी।
1: लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क को मॉडरेट करना चाहते हैं तो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, आप जो अभी तक आपने निवेश किया उसको ना छेड़ें क्योंकि आप उसको रिडीम करेंगे, टैक्स लगेगा। तो इंक्रीमेंटल जो आपके SIPs हैं आप उनको थोड़ा सा अपने फ्लेक्सी कैप और कॉन्ट्रा फंड की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं
2: जी। अगले कॉलर हैं भोपाल से शंकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: नमस्ते मार्केट फंड।
2: नमस्कार
3: सर, ये SIF स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड क्या रिटेल इन्वेस्टर के लिए ठीक रहेंगे होते हैं? क्योंकि अगर किसी के पास कुछ 10 लाख रुपए है उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख का होता है ऐसा कहा जाता है, इज इट राइट और नॉट? एंड सेकेंडली इसका एग्जिट क्या होता है, इसमें कब निकल सकते हैं, 1 साल के बाद जैसे उसमें होता है वैसे ही होता है? एंड हाउ इट इज इन्वेस्टेड, डू वी हैव टू हैव डीमैट अकाउंट or we can simply buy as we buy other mutual fund on the SBI mutual fund website or any other website? So SIF ka rahe sir bataiye sir retail investors ko humko, thank you।
1: जी तो पहले तो आपकी जानकारी बिल्कुल सही है कि इनमें मिनिमम टिकट साइज 10 लाख का होता है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स में भी थोड़े एफ्लुएंट इन्वेस्टर्स के लिए ये प्रोडक्ट उनके लिए टारगेटेड है। क्योंकि अगर आपके पास 10 लाख रुपए और आप एक SIF में लगाते हैं तो वो भी मेरा ख्याल मैं उसके अगेंस्ट ट्राई दूंगा क्योंकि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो जिन निवेशकों का कम से कम 50-60 लाख या उससे ज़्यादा का पोर्टफोलियो है तो उसमें वो SIF फिर भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिहाज से अभी SIF काफ़ी नए हैं, जो सबसे पुराना SIF फंड है उसको भी अभी शायद अक्टूबर में 1 साल कंप्लीट होगा, तो बहुत नए फंड्स हैं। आप अभी इनको ट्रैक करिए, इनको समय दीजिए, मेरे ख्याल में अभी इनमें इन्वेस्ट करने की जल्दबाजी नहीं करिए। कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में कोई बहुत ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नीड है जो कि ये फुलफिल करते हैं, जो कि आपका एक साधारण म्यूचुअल फंड से पूरी नहीं हो सकती कोई इन्वेस्टमेंट नीड। तो इनमें इन्वेस्ट करने की जल्दबाजी नहीं करिए, ट्रैक रिकॉर्ड इन्हें बनाने दीजिए, अपने आप बातें सामने आएंगी। काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट्स हैं म्यूचुअल फंड्स SIFs, तो अपने आप इनको अपने आप को प्रूव करने दीजिए पहले, उसके बाद इसमें निवेश करने के बारे में फैसला कीजिएगा। बाकी जहाँ तक इनके ऑपरेशनल मोडालिटीज़ की बात है तो ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ही ऑपरेट करते हैं, उसी तरह आप इनको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, डीमैट अकाउंट की इनमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो जो लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो आप इनको उस सेंस में एक अलग तरीके के म्यूचुअल फंड ही आप समझ सकते हैं।
4: All right, our next caller joins us from Maharashtra, Gurunath, please ask your question।
5: जी मैम नमस्कार।
4: जी नमस्कार
5: मैम, मेरा क्वेश्चन है मैम, ये जो म्यूचुअल फंड है मैं मतलब SIP करके ही जाना चाहिए, और जो फिलहाल जो हालात है मतलब मैं शेयर मार्केट के बारे में बोल रहा हूँ, शेयर मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है, कुछ FIs या फिर पैसा निकाल के ले गए, डोमेस्टिक भी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो मैम सर से मेरे को यही पूछना था कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का कितना प्रतिशत कनेक्शन रहता है, क्योंकि मैं सुना हूँ कि म्यूचुअल फंड वाले भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, और हम फिलहाल पैसे लगाना चाहिए किसी फंड में? थैंक यू मैम।
1: जी, आपका पहला सवाल कि इनमें कितना कनेक्शन रहता है, तो देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का 100% कनेक्शन होता है। अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं जो कि आपका पैसा आगे आपके बिहाफ पर इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो जैसे मार्केट में उतार चढ़ाव

0: उसी तरीके से आपका म्यूचुअल फंड भी बिहेव करेगा। तो करेक्शन कनेक्शन भरपूर है, कनेक्शन 100% है, वही उतार चढ़ाव। बस फर्क यही है कि क्योंकि आपके बिहाफ पर एक फंड मैनेजर जो कि एक प्रोफेशनल है, सूझबूझ के साथ आपका पैसा लगाता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो खराब कंपनी के स्टॉक से आपको बचाए रखेंगे, अच्छी कंपनी के स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश करेंगे। लेकिन फिर भी जो उतार चढ़ाव है वो तो बाजार के अधीन है, तो जब मार्केट गिरेगी तो कोई भी फंड मैनेजर एक इंटरिम लॉस से आपको नहीं बचा सकता। तो आप ये मानकर ही इन्वेस्ट करिएगा म्यूचुअल फंड्स में कि उतार चढ़ाव का अनुभव तो आपको मिलेगा ही, और उसको आपको धैर्य के साथ बर्दाश्त करना पड़ेगा। जहाँ तक आपका सवाल था कि इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं,
1: जी वो होते कि अभी जो हालात है, मार्केट कुछ ज़्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है या गिरावट है, ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। FPIs पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो फिर भी कुछ कर ही रहे हैं।
0: जी तो देखिए, अगर आपके पास कम से कम 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, कम से कम आप 5-7 साल की अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप SIP के माध्यम से मार्केट में निवेश करिए। और एक लंबे समय के इन्वेस्टर के लिए तो एक्चुअली निवेश करने का अच्छा टाइम है, जब मार्केट में गिरावट है तभी आप लंबे समय में एक अच्छे प्रॉफिट का अनुभव कर पाएंगे। तो अगर आप 5-7 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव में धैर्य बनाए रखने में सक्षम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप SIP के जरिए अपना निवेश शुरू कर सकते हैं।
2: All right, moving on with some more news stories. External Affairs Ministry today said there have been a number of concrete, practical development-oriented outcomes during the BRICS summit, which concluded today. Briefing media in New Delhi this afternoon, Secretary ER in the Ministry, Sudhakar Dalela, said there are over 50 concrete outcomes across various thematic tracks, which is a significant achievement of India's leadership this year. He said BRICS has maintained consistent position on need for UN reform. India would like to have more engagements with BRICS nations going forward. Mr. Dalela informed that the session also received the report of the BRICS Business Council and BRICS Women's Business Alliance to bring the voice of businesses and particularly of women in business directly before leaders.
1: जी, आशुतोष, हम बात कर रहे थे विदेशी फंड्स की, विदेशों में निवेश करने वाले फंड्स की, और नैसडैक में जो असर हो रहा है। लेकिन अभी कुछ समय में देखा गया, अभी पिछले कुछ दिनों में, कि नैसडैक का जो ETF है उसमें काफ़ी तेज़ी दिखाई दी है। इसकी वजह क्या है और आम निवेशक को कितना लालच करना चाहिए उसे देखकर?
0: जी तो इसका रीज़न ये है कि पिछले कुछ दिन में ये देखा गया है कि जो इंटरनेशनल ETFs हैं, नैसडैक या S&P 500, नैसडैक Q50 को जो फॉलो करने वाले ETFs हैं, उनका जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडेड प्राइस है उसमें काफ़ी तेज़ी देखी गई है, और NAV से ये फंड्स काफ़ी अत्यधिक प्रीमियम पे हैं, 40-50% के भी प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अभी हाल फिलहाल तक इनकी जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता था वो ये NAV से 20% ऊपर या नीचे के दायरे में ही हो सकता था। इनके ऊपर वो दायरा था, उसके ऊपर सर्किट लग जाता था, 2 दिन पहले की NAV से ये 20% से ज़्यादा मूव नहीं कर सकते थे। लेकिन हाल फिलहाल में इनकी ट्रेडिंग के जो प्राइस है उसकी रिस्ट्रिक्शंस में चेंज किया गया है, और अब उसको उनके पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से एंकर कर दिया गया है, ना कि NAV से। तो अगर पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस ऑलरेडी प्रीमियम पे है, आज और उसके ऊपर प्रीमियम बढ़ जाएगा, कल उसके ऊपर और बढ़ सकता है, तो अभी प्रीमियम की जो मात्रा है इनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये ट्रेंड देखा गया है इंटरनेशनल ETFs में ही। ये रूल अपने आप में कोई गलत नहीं है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के ऊपर इसी तरह से ट्रेडिंग के रूल लगते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ETFs में प्रॉब्लम यह है कि नई यूनिट्स क्रिएट नहीं हो सकती, RBI की लिमिट्स हैं। तो इसलिए जब भी ये देखा गया कि जब भी कोई चीज़ प्रीमियम पे ट्रेड कर रही होती है तो उसकी नई यूनिट्स क्रिएट होती हैं, सप्लाई उसकी यूनिट्स की बढ़ जाती है और दाम अपने आप NAV के नज़दीक आ जाता है। इन फंड्स में वो मैकेनिज्म अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि नई यूनिट्स क्रिएशन पे पाबंदी लगी हुई है, तो इस कारण से डिमांड इनकी है, सप्लाई और मार्केट में नहीं आ पा रही है। तो वो एक जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे प्ले में है, उस वजह से ये काफ़ी प्रीमियम पे हैं। अब सवाल यह है कि निवेशकों के लिए इसका क्या इम्प्लीकेशन है। तो आप अगर किसी भी विदेशी ETF में निवेश करने की, इंटरनेशनल ETF में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये ज़रूर चेक करें कि वो NAV से कितने प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि कोई

0: फंड अगर 50% प्रीमियम पे है तो ऐसा हो सकता है कि अगले दो साल में वो बहुत अच्छे रिटर्न दे, 40-50% भी रिटर्न दे, लेकिन अगर उसके बाद ये प्रीमियम वापस नीचे आ जाता है तो दो साल होल्ड करके भी शायद आप लॉस में रहें। तो ये आज की डेट में ऐसा है कि कोई 100 रुपये की दाम वाली चीज़ आप 150 रुपये में खरीद रहे हैं, तो इसमें आपको काफ़ी केयरफुली अगर आप स्टॉक मार्केट पे ETF की यूनिट्स खरीद रहे हैं इंटरनेशनल ETF की, तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी
1: जी। यानी ज़्यादा हीटेड बाजार अगर दिखाई दे तो दूर ही रहें
0: जी।
2: सो आई हैव बीन लिसनिंग टू ऑल योर पीस ऑफ एडवाइस वेरी केयरफुली आशुतोष, एंड यू स्पोक अबाउट रिस्क एपेटाइट, यू मेंशन टाइम होराइजन, नॉट रिएक्टिंग टू एवरी मूवमेंट इन द मार्केट। सो इज कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, आर दीज द की एट्रीब्यूट्स व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री?
0: ओ एब्सोल्युटली, इन फैक्ट देयर इज अ वेरी ओल्ड एडेज व्हिच इज सेड दैट टाइम इन द मार्केट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट।
2: वेल सेड।
0: सो a lot of people try to time their entry, they want to buy when the stocks are at their lowest and exit when they are at the highest. You know, on paper sounds a very noble concept, but in practice it is almost next to impossible to implement. So you just have to remain disciplined, keep investing periodically, match your investments to your cash flow patterns. You earn monthly, you save monthly, and you invest monthly. And if you keep doing that with discipline through the ups and downs of the market, let the growth of the Indian economy is and is likely to continue to be among the world's fastest growing major economies for decades from here. Let that momentum work for you and let that tailwind earn you the wealth.
2: If time permits, we'll come back to this interesting discussion. Meanwhile, let's hear from Dev, who connects with from Faridabad, what his question is.
3: Hello.
1: जी देव, अपना सवाल पूछें।
3: नमस्कार सर।
1: जी सवाल
3: सर, मेरी बेटी अभी 18 साल की हुई है और मुझे उसके लिए कुछ फंड खरीदने हैं, लमसम अमाउंट लगाना है, और अजन 5-10 साल का है, और मेरे पास फ्लेक्सी का फंड ऑलरेडी है, एक लार्ज कैप भी है, एक PSU है और ELSS है। ये फंड मेरे पास 2021 में हैं सारे, और अभी मुझे बेटी के लिए कुछ फंड खरीदना, तो किस में मुझे लगाना चाहिए? मेरे पास अलग अलग AMCs के फंड हैं एक्चुअली।
0: जी, आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑलरेडी है, अगर आप इन फंड से संतुष्ट हैं, इनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है, ठीक ठाक है, आपको अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, तो कोई नया फंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना ही देख सकते हैं क्योंकि आप अपनी बिटिया के लिए पैसा ही लगाना चाहते हैं। अगर एक यंग एज पर अगर अच्छा टाइम होराइजन आपके आगे है, रिस्क एपेटाइट है, तो आप थोड़ा पैसा किसी स्मॉल कैप फंड में भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा एग्रेसिव आपका पोर्टफोलियो बनाएगा, थोड़ा आपका पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी बढ़ाएगा, लेकिन रिटर्न बूस्ट करने के लिए अगर आप 10-12% अपना पैसा इस पोर्टफोलियो का एक डेडिकेटेड अच्छे स्मॉल कैप फंड में लगाते हैं तो कोई बुराई नहीं है। बाकी आपके पास जो फ्लेक्सी कैप वैल्यू फंड्स हैं आप उनमें निवेश करते रहें। ELSS का अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो ELSS में कोई इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट करने का कोई बहुत ज़्यादा पर्पस नहीं है क्योंकि आपको न्यू टैक्स रिजीम में ATC के तहत टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, तो आप ELSS फंड उस केस में बंद कर सकते हैं। और अगर आपको नया फंड ऐड करना ही है तो स्मॉल कैप जैसे मैंने बताया, या फिर आप मल्टी कैप फंड ले सकते हैं जिसके थ्रू भी आपको मिड और स्मॉल कैप का अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है, जो कि आजकल फ्लेक्सी कैप फंड्स में अब कम देखने को मिलता है
1: जी। और नज़र डालें FPIs के हाल पर, इस महीने अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPIs ने भारतीय बाजार से पैसे निकाले हैं। जुलाई और अगस्त में उन्होंने लिवाली की थी। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि के कारण निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता प्रभावित हुई है। इसके चलते सितंबर में अब तक FPIs ने घरेलू शेयर बाजार से 13,138 करोड़ रुपए की निकासी की है। कुल शुद्ध निकासी में से 14,474 करोड़ रुपए की राशि शेयर बाजारों से निकाली गई। हालांकि प्राथमिक बाजार के माध्यम से FPIs निवेश का रुझान सितंबर में भी जारी रहा। इस महीने अब तक FPIs ने प्राथमिक बाजार में 1,336 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और अगले कॉलर है हमारे दिल्ली से वरुण, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: नमस्कार।
1: नमस्कार
4: सर, मुझे पूछना है, जैसे एक मल्टी कैप काफी फेमस मल्टी कैप फंड है, आप लोग नाम लेने मना करते हो, फिर भी मैं बता रहा हूँ, तो उसका अभी प्रदर्शन काफी खराब चल खराब क्या है मतलब उतना लोग कहते हैं साइज बहुत बड़ा हो गया और उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है, अब क्या सर, आप समझ ही गए होंगे, तो उसमें क्या सर इन्वेस्ट स्टेट रहना चाहिए? मेरा सीट में भी यूज मनी जा रहा है उसमें ना, क्या उसको बंद करके उसका

0: ने जो दूसरा फंड है जो अभी जो वैल्यू रिसर्च का हिसाब से जो अच्छा फंड है उसमें इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। थैंक यू
1: जी। देखिए पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी इवन द बेस्ट ऑफ फंड्स गो थ्रू पैचेस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। कोई भी फंड मैनेजर जादूगर नहीं होता है कि वो हर तरह की मार्केट कॉन्टेक्स्ट में हर तरह की स्थिति में अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो फंड्स भी अपने उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे पीरियड्स आते हैं, ऐसे फेजेस आते हैं कि जब वो अंडर परफॉर्म करते हैं, तो एक एक दो दो साल तक भी वो अंडर परफॉर्म करते हैं, तो आपको उतना धैर्य बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास एक लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर फंड है जो कि आपके होल्डिंग पीरियड पे उसने अच्छे रिटर्न्स दी हैं और आपको फंड में और कोई डिस्टर्बिंग चीज़ नहीं दिखती है कि जैसे उसका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है अगर वो अचानक से बहुत चेंज नहीं हो गया है, फंड मैनेजर चेंज नहीं हो गया है, तो जो अंडर परफॉर्मेंस है वो किसी डेफिनेटिव रीज़न से आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा कोई खास चिंता की ज़रूरत नहीं है। फंड को टाइम दीजिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। अब आपका सवाल कि इसमें आपको SIP जो आपका कंटिन्यू हो रहा है वो बनाए रखना चाहिए कि नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि वो डिसीजन आप इस कॉन्टेक्स्ट में लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में बाकी कितने फंड हैं, इस फंड का कितना वेटेज आपके पोर्टफोलियो में है। अगर ये फंड ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में 25-30% वेटेज है इसकी, तो मेरा ख्याल आप इसमें अपना SIP बंद करके डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फंड इंडिविजुअली, तो आप उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए कि आपको इसमें और पैसा लगाना है या नहीं।
2: जी, और देखें पिछले सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना रहा। MCX में अक्टूबर अनुबंध के सोने का वायदा भाव सप्ताह के दौरान लगभग स्थिर रहा और 1,52,784 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं दिसंबर अनुबंध की चांदी में 1.1% की गिरावट आई और ये 2,34,974 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ।
3: Domestic investors are expected to focus on key market triggers in the holiday shortened week ahead, including the US Federal Reserve's policy decision, macroeconomic data, foreign institutional investor flows, commodity prices, and bond yields. Indian stock markets will remain closed tomorrow for Ganesh Chaturthi. Meanwhile, market participants will closely track key economic indicators, including retail and wholesale inflation data, import-export figures, and employment data. The primary market is also set for another busy week with 5 main board IPOs opening for subscription. Global monetary policy will remain in focus beyond the US, with the Bank of England and Bank of Japan also scheduled to announce their policy decisions during the week.
2: आशुतोष, आज वक्त इतना ही है कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
3: Listeners, before we wrap up, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi says New Delhi Declaration adopted at BRICS Summit will provide clear direction for shared vision and future cooperation. Global crude oil prices surge around 9% last week. And domestic investors to focus on US Federal Reserve's policy decision, macroeconomic data and geopolitical developments for Qs next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
6: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर

0: रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स समूह में मजबूती और लचीलापन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि महामारी, जलवायु आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं में रुकावटों ने ये दिखा दिया है कि आपस में जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए।
0: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डाइवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज, बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका और बरुंडी के राष्ट्रपतियों और नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य अब भी लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में भारत का मुकाबला आज रात 8 बजे मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that BRICS diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
0: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समय

0: सीमित नहीं रहता। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए।
1: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
0: श्री दलेला ने कहा कि ब्रिक्स संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। श्री दलेला ने बताया कि शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स व्यवसाय परिषद और ब्रिक्स महिला व्यवसाय गठबंधन की भी रिपोर्ट मिली, जिनसे कारोबारियों विशेष रूप से महिला उद्यमियों की राय नेताओं तक पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। यमन में ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने पड़ोसी देश सऊदी अरब पर नए हमलों का दावा किया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब यमन की सऊदी समर्थित सरकार ने लाल सागर के तट पर विद्रोहियों के हालिया कब्जे को अत्यंत चिंताजनक बदलाव बताया है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।
0: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डाइवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज, बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
3: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तो तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत

0: बिहार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं।
4: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति की संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
3: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों

0: को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
1: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS is an ecosystem of solutions, stresses need to translate all outcomes of New Delhi Declaration into time-bound actions as 18th BRICS Summit concludes. Prime Minister holds 15 bilateral meetings with world leaders besides engagements with heads of international institutions on the sidelines of the summit. Home Minister Amit Shah says India should aim to become a global leader in lab-grown diamonds and jewellery sector. 6 persons killed and nearly 130 missing after Indonesian ferry capsizes in Java Sea. In hockey, India's men's and women's teams clinch Junior Asia Cup titles at Moshi in China. And in cricket, women's T20 Asia Cup final match between India and defending champion Sri Lanka underway in Dubai. Indian men's team takes on Afghanistan in the opening game of the 3-match T20 series in Delhi. And now the news in detail. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction.
3: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रिलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
2: Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
3: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका उलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल में अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें अडॉप्ट किया गया New Delhi Declaration हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: Earlier in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping, as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with heads of state and government, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. The meetings provided an opportunity to strengthen bilateral ties, discuss issues of mutual interest, and exchange views on regional and global developments. Union Home Minister Amit Shah has called upon the Indian gems and jewellery industry to ensure that the entire ecosystem and manufacturing chain of lab-grown diamonds remains firmly in Indian hands. Addressing the 52nd India Gems and Jewellery Award ceremony in Mumbai, Mr. Shah said that lab-grown diamond market in terms of volume is expected to become nearly 50 times the size of the current diamond market, describing it as a monumental opportunity for India. In Indonesia, the death toll has risen to 6 after a ferry carrying more than 240 people overturned due to bad weather in the Java Sea today. Nearly 130 passengers and crew members remain missing. Indonesian rescuers said at least 107 people have been rescued so far, as search and rescue operations continue around the vessel's last known location. India has condemned the attack on the commercial vessel MT Algaya off the coast of Oman today. In a statement, the Indian embassy in Oman said 13 Indian crew members have been rescued so far, while search and rescue operations are continuing for one missing Indian national. The embassy said it is closely monitoring the situation and coordinating with Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. It also thanked

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने कल मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के दो दिवसीय सम्मेलन में हिंदी को बढ़ावा देने और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ इसके समन्वय पर चर्चा करने के लिए विद्वान, साहित्यकार, शिक्षाविद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी एकजुट होंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की आज ओमान में बैठक होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान गणेश